0: ये मंदिर अच्छे है ना?
1: हाँ जी, मंदिर बहुत सुंदर है ना?
2: हम आपके रेनकोट फैमिली वर्द रहा।
1: नमस्ते।
2: बिस्ते।
1: इस मंदिर का पंडित कौन है?
2: कौन ऐसा मान अब पंडित का मतलब कोयल के बेली उठा
1: नहीं बेटा
2: बेटा एंग मातर रान का எல்லாம் மாச சம்பளம் அதுவும் பொங்கலையும் புளியரும் போட்டு கழிச்சு போறானுமா?
0: ஓ கோன் ஹே
2: யாரு அவரா? அவரு
3: நல்லாரு நல்லாரு. நான் மடப்படி வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடுறேன்.
2: வேணு சாஸ்திரி, வேணு சாஸ்திரி.
0: அச்சா வேணு சாஸ்திரி.
2: ஆமா ஆமா.
1: இஸ் பச்சி கா பர்த்டே ஹே, பண்டிட் சாஹியே, பூஜா கரானா ஹே, பூஜா
2: பூஜா கரானா ஹே. இருங்க சொல்றேன். எப்பா திருநாகர்சே,
1: இப்படித்தான்
2: கோயில் பேச.
1: இஸ் பச்சி கா ஜன்மதின் ஹே, तो मंदिर से बोला पूजा करवा ले।
3: अच्छा, आप हमारे टेंपल में आए हैं, बहुत खुश हुआ।
1: आप अच्छी तरह हिंदी बोलते हैं?
3: हम हिंदी तो जानते ही हैं। अच्छा बेटी, तेरी जन्मदिन है? क्या नाम तेरा?
1: मुस्कान।
3: मुस्कान बहुत प्यारी नाम है। अच्छा बेटी की नक्षत्र क्या है?
4: तारीस पूसम।
3: ओ पूसम, वेरी गुड स्टार, शी विल बिकम अ वेरी बिग हीरोइन, तू तो आयशर राय बन जाएगी।
4: बेटा, व्हाट्स द नेम ऑफ द टेंपल?
3: ये तो शाचिनाथ टेंपल है।
4: हु इज द मेन गॉड?
3: लॉर्ड शिवा।
4: या अच्छा अच्छा
3: अच्छा, चलिए पूजा करवा देंगे। ए, वहाँ क्या देख रहा है? काम कर, साफ कर, मंदिर को साफ कर, बेल मार बेल। चलिए आप चलिए।
2: எல்லா மூலையும் பேசுறா?
3: யார் இவாளா? இவங்க வடநாட்டுல இருந்து வந்திருக்காங்க. ஏ மந்திர் கா படா பண்டிட ஹே, வேணு சாஸ்திரி ஜி.
0: வேணு சாஸ்திரி கா?
3: ஹாஞ்சி.
1: ஏ லட்கா கோன் ஹே?
3: ஏ ஹமாரா மந்திர் கா பெல் பாய் ஹே.
1: பெல் பாய்?
3: ஹாஞ்சி.
1: ஏ தோ பேட் பாய் ஹே.
5: இன்ன பத்தியா வாட் ஏதோ சொல்லிருக்காங்க.
3: ஐ பூஜை கரेंगे.
2: பேட் பாயா? என்ன
5: பேடு பாய்?